0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी तिजारती तंजीम WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो एवियाला ने खबरदार किया है कि आलमी तिजारती निज़ाम 80 सालों में अपनी सबसे बड़ी रुकावटों का सामना कर रहा है। पीर को टोक्यो में एनएचके को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने निशानदेही की कि जहां दुनिया ने अमरीका की जानिब से महसूलाती इकदाम देखे हैं, वहीं दीगर WTO अराकीन ने भी मुख्तलिफ इकसाम के इकदाम नाफिज किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निज़ाम में इस्लाहात नहीं हो रही और यह निज़ाम वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो रहा। WTO अपने फैसला साजी के अमल में इस्लाहात की कोशिश कर रही है। इसके अहम चैलेंजेस में से एक ये है कि तमाम अराकीन के दरमियान इत्तफाक़ राय की शर्त की वजह से इसकी सरगर्मियाँ मफलूज हैं। अगरचे तंजीम ने मार्च में एक वजारती इजलास मुनाकिद किया, लेकिन तरीक़ाकार मंजूर करने में नाकाम रही। ओकोंजो एवियाला ने इस नाकामी की वजह अराकीन के दरमियान दीगर मसाइल पर इख्तलाफात को करार दिया, लेकिन जोर दिया कि पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि WTO अब भी अहमियत रखती है और निशानदेही की कि आलमी तजारत का 3/4 हिस्सा WTO की शराइत पर हो रहा है। जापान की मैशियत मुसलसल दूसरी सामाही में फैली है। इस नमू की बुनियादी वजह बरामदात में बहाली और सारिफ खर्च में इजाफा था। काबीना दफ्तर ने जनवरी से मार्च तक की मुद्दत के लिए इब्तदाई आदादोशुमार मंगल को जारी किए हैं। उनके मुताबिक अफराते जर के रद्दोबदल के बाद मजमुई कौमी पैदावार गुज़श्ता सामाही के मुकाबले में 0.5% बढ़ी है। सालाना बुनियाद पर यह शरह 2.1% बनती है। इनफरादी खर्च मजमुई कौमी पैदावार के निसफ से ज्यादा है। यह पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 0.3% बढ़ा क्योंकि सार्फिन ने कपड़ों और बाहर खाने पर ज्यादा खर्च किया है। अमरीका को गाड़ियों की तरसील में बहाली के बायस बरामदात में 1.7% इजाफा हुआ। ये वाशिंगटन के महसूलात की वजह से होने वाली गिरावट के बाद की बहाली है। काबीना दफ्तर का कहना है कि ईरान तनाज़े के असरात महदूद थे, तहम तवील मुद्दती नमू के बारे में तशवीश मौजूद है क्योंकि खाम तेल की मुसलसल बुलंद कीमतें कुछ कारोबारों पर बोझ डाल रही हैं।
1: और सामिन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत जापान और हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल तूल पकड़ने की सूरत में मुमकिन इक्तिसादी असरात से निपटने के लिए इकदाम कर रही हैं। जापान ने तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क ब्राज़ील से कहा है कि वो खाम फराहमी का उसूल यकीनी बनाने में मदद दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा है कि उन्होंने ईरान पर मंसूबा शुदा हमले को रोकने का फैसला किया है जो मंगल के रोज किया जाना तय था। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।